तक तक तक तक तक तक तक तक हो यतिका दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाइ हिँड़